सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: शिव मंदिर है। कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें।
1: सच
0: सच।

सो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

Mm-hmm.

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

सत्यकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है 90s एंड न्यू स्पेशल। जी बिल्कुल, और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने की डिमांड भी आई हुई है, लेकिन सबसे पहले आप मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करते हैं। धन्यवाद।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और दोस्तों मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और बहुत से दोस्त हमसे जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफ भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। उनके बाद जुड़े हैं सबसे पहले उनके बाद हैं हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मिसाल अंगद जी हैं, वेलकम करते हैं। और सुनीता गोप जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी वेलकम करते हैं। आर के रवि जी वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि शाम ढली तो लगा कि फिर कोई आ रहा है, लिखते हैं कि शाम ढली तो लगा कि फिर कोई आ रहा है, और हवाओं ने जो छिड़ा है वो तरन्नुम तो लगा कोई मुस्कुरा रहा है। हर शाम सूरज ढलता है एक नए कल के लिए, ये ढलती शाम भी सिखाती है जीना हर पल के लिए। वाह क्या बात है, अच्छा लिखा आपने आर के रवि जी। साथ ही साथ आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से जुड़ गया हूँ रेडियो हॉट स्टार से। सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और हमारे ये काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है यूएस से। और निशांत राय जो क्या नाम है, निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी निशांत राय बोले जी। अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और यानी प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। संध्या पटेल जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: आरजे अमन सर जी नमस्कार, मैं आपके कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ और वाह क्या कमाल की बात है, जब आप आए उसके पहले कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। तो जब दिल में आ गए तो दिल तो शोर करेगा ही ना, बहुत अच्छा लग रहा है सर।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपका भी। और सुनील चौहान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। ये है हम हिमाचल प्रदेश से हैं जी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भाई सुनील चौहान जी। और नंदलाल यादव जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और जाकिर खान जी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं इनका भी। और शेख मोहम्मद ताहिर जी जुड़ चुके हैं यानी कोलकाता से, बहुत बहुत वेलकम है और तबीयत तो बहुत अच्छी है। और बबीता जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और राय परवा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। जितने भी दोस्त अभी सुन रहे हैं या जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम वेलकम वेलकम करते हैं। और सबसे पहला आज का जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो कहाँ से शुरू करूँ, ओके सबसे पहले अनिल अनिल मेहता जी गाना प्ले करता हूँ, इंजॉय कीजिए।

मोहम्मद ताहिर जी, आपका गाना मुझसे गलती से वो रिजेक्ट हो गया है। आप अगर चाहें तो दूसरा भेज सकते हैं, अभी भेज सकते हैं, या मतलब उसी गाने को दोबारा भेज सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगा।

0: बिल्कुल, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि ये सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए। रंग यानी काला हो या गोरा, यानी किरदार साफ होना चाहिए। और बदलते हुए लोगों के बारे में क्या सोचे, बस अपना रास्ता खुद बनाने का हुनर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: जय अमन सर जी, सुसंध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। अनिल मेहता जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, इतना अच्छा ओपनिंग सॉन्ग सुनाए और इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितेंद्र गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। एमडी जलील जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाईजान। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और नंदलाल यादव जी लिखते हैं कि अनिल मेहता जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद देते हैं अनिल मेहता जी को। और अनिल यानी कि कश्यप जी लिखते हैं कि अनिल मेहता जी का गाना मेरा फेवरेट है, थैंक यू सो मच। और आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि वाह, आज तो फर्स्ट सॉन्ग ही इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताएं। बिल्कुल सभी गाने आज के बहुत अच्छे अच्छे हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लगा गाना, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। अनिल जी की पसंद। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि अनिल जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। संतोष गौंड जी लिखते हैं कि सूरज के बिना तो सुबह नहीं होती है, और चांद के बिना तो रात नहीं होती है, बादल के बिना बरसात नहीं होती है, और रेडियो हॉट स्टार के बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होती है। अमन सर जी मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। संतोष गौंड जी और जितेंद्र जी लिखते हैं कि वाओ, हाउ रोमांटिक सॉन्ग, मजा आ गया सुन के। और रॉय पर्वत लिखते हैं कि आपके यादों में कुछ ऐसा खो जाते हैं अमन जी, हम हंसते हंसते भी अक्सर आपको याद कर लेते हैं, हाय थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ ये यानी कि प्रियंका जी का है, और प्रियंका जी सुनना चाहती हैं इस दीवाने लड़के को कोई समझाए जी।
2: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनो।
2: सुना।
3: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।
0: आदाब, आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल के बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। और प्रियंका जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच, मेरा गाना प्ले करने का। और क्या कहती हैं, सुनते हैं।
1: हेलो सर, गुड इवनिंग। अभी आपने फर्स्ट सॉन्ग जो सुनाया है वो काफी अच्छा लगा।
0: अच्छा,
1: और वो सॉन्ग मैं भी सुनाना चाहती हूँ।
0: सुना दीजिए।
1: मैं हसीना नाचनी ना, हर तरफ ये शोर है, तू दीवाना बन गया है, दिल पे किसका जोर है। मैं दीवाना कम नहीं हूँ, हार करना जाऊंगा, दिल चुराने आ गया हूँ, दिल चुरा ले जाऊं।

0: जाएगा, टेंशन मत।
1: थैंक यू, बहुत ही सुंदर सॉन्ग था ये।
0: जी बिल्कुल, और इसी बात पर यहाँ पे जितेंद्र गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये प्रियंका जी की च्वाइस बेहतरीन लगी है। और हमारे विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और निशांत राय बोले, लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना जा, जी जी बिल्कुल। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि प्रियंका जी के बसन शानदार लगी है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि वाह मस्त सॉन्ग, सुपर सुपर सुपर, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी बिल्कुल। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि इस दीवाने लड़के को कौन समझा है, क्या गाना है, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया है। राय पर्वत जी लिखते हैं कि दिल की बात दिल लफ्जों में कहां हम कह पाते हैं, अमन जी जो अपने होते हैं वही दिल के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे दीपक

0: बिल्कुल बहुत जताते हो चाह हमसे और करोगे कैसे निभा हमसे। और बहुत ही प्यारा गाना तो था ही, फीडबैक भी बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं। और यानी प्रियंका जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं पहले।
1: हेलो अमन जी,
0: जी बोलिए।
1: आपने मेरा ये जो सॉन्ग सुनाया ये काफी अच्छा फेवरेट सॉन्ग है मेरा और ये मैं गाना चाहती हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: इस दीवाने लड़के को कोई समझाए,
0: अच्छा
1: प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए, डरते दिल जाने ना, पास में जितना हो वो उतनी दूर ही जाए जाए आ जाए।
0: पकड़ के रखिएगा।
1: दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। और इसके बाद में लास्ट में एक जो इसमें शायरी है वो बोलना चाहती हूँ कि फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जमा होता है।
0: बिल्कुल।
1: दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
0: वही तो मैंने भी कहा,
1: इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: और यहाँ पे सुनील चौहान जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि बारिश के पानी को अपने हाथों में समेट लो और जितना आप समेट पाए उतना आप हमें चाहते हैं और जितना न समेट पाए उतना हम आपको चाहते हैं। आई लव यू हॉट स्टार। ओ थैंक यू सो मच सुनील जी। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं, एक से बढ़ के एक गाने चल रहे हैं जी। अगला गाना भी सुनिए, बहुत प्यारा आने वाला है वो भी, यानी कि निर्मल राय जी का। और अगला यहाँ पे निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर राय पर्वत जी लिखते हैं कि अमन जी योर वॉइस इज वेरी गुड, ओ थैंक यू सो मच। और लिखते हैं कि दिल की बात को लफ्जों में कहाँ हम कह पाते हैं अमन जी, जो अपने ओ माय गॉड, और जो अपने होते हैं वो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता। अच्छा ये तो हो गया है शायद। और निर्मल राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत सही समय पे हैं भाई क्योंकि अगला गाना आप ही गाने वाला है। एमडी जलील जी लिखते हैं कि नंबर वन सॉन्ग है भाई साहब की पसंद, मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और अजय भगत जी लिखते हैं कि सत्यम भगत जी की पसंद बहुत लाजवाब लगा है, थैंक यू सो मच। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, सत्यम भगत जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर
0: जी, वेलकम है आपका भी। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि हर वक्त याद आने की शिकायत है आपसे, हर वक्त याद आने की शिकायत है आपसे, ना जाने क्यों और कितनी चाहत है आपसे, लोग तो बहुत है याद करने को लेकिन दिल को ना जाने इतनी मोहब्बत है आपसे, आए हाय क्या बात है। और यहाँ पे सर्वजीत सेठी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
3: अमन सर जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
3: मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा, बताइए।
3: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना रहे।
0: धन्यवाद देते हैं आपको। और ये क्या कहते हैं अनिल कश्यप जी सुन लेते हैं।
4: आज 90 का थीम है तो इसमें उम्मीद है कुछ लोग डूबे हैं और कुछ लोग डूबने वाले हैं क्योंकि आज जो बाढ़ आने वाली है गानों का उसका तो कोई हिसाब नहीं है।
0: बिल्कुल,
4: लेकिन
0: बिल्कुल।
4: इन सब के बीच हम लोग सब लोगों के पालनहार आरजे अमन सर जी हम सबका पार लगाएंगे और कार्यक्रम तो इतना अच्छा चल रहा है कि पूछना नहीं है।
0: जी, जी, जी।
4: ऐसा ही थीम मजा आता है सुनने में।
0: जी बिल्कुल, अभी सुनते रहिए, अगला गाना बहुत मजा आने वाला। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी आपका शाम 6 बजे वाला प्रोग्राम शुरू होता है और हम अपनी दुकान पर इसे बजाता हूँ और मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, वाह क्या बात है। मैं सभी ग्राहकों को एक बार आपकी ओर से नमस्कार करना चाहता हूँ कि आप लोग रेडियो हॉटस्टार सुनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और सत्यम भगत जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ ओम नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि ये बहुत ही शानदार गाना लगा है और मेरे दोस्त का नाम है अजय भगत जी, ओके ठीक है। और पर्वत जी भी, और रवि मोहर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। गजानन सरकार जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। तो भाई निर्मल राय जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को, ये दुआ है मेरी रब से कि तुझे आशिकों में सबसे मेरी आश की पसंद है। बिल्कुल

0: बिल्कुल, ये दुआ है मेरी रब से कि तुझे आशिकों में सबसे सिर्फ मेरी अशकी पसंद आए, मेरी अशकी, है ना। राय पर्वत जी लिखते हैं कि आपकी बातों में सादगी है, आपकी सोच में कमाल है, और निर्मल जी आप जैसा इंसान तो यानी मिलना एक मिसाल है। वाह वाह, क्या बात है भाई। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और सर्वेज भागा जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: जय मानसा जी, निर्मल राय जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर।
0: ओके, वेलकम है आपका भी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि थैंक यू सो मच इस गाने को प्ले करने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये दुआ है मेरी रब से, सबसे बेहतरीन लाजवाब गाना सुनने को मिला, दिल खुश हो गया एकदम। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: हेलो
0: जी,
2: ये जो भी आपने सॉन्ग सुनाया बहुत जताते हो चाहा हमसे, ये सॉन्ग की दो लाइन मैं भी सुनाना चाहती हूँ।

0: मेरी तो ख्वाहिश तुम्हारी चाहत, मुझे भी कब से तुम्हारी हसरत, मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, हो जाए ना कोई गुनाह हमसे। ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल, बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे दिल
1: अनिल मेहता जी के पसंद और प्रियंका जी के पसंद, सभी के पसंद बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सुन के। और ये दिनेश कुमार राय जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं अजय भगत जी के यहाँ रोज आपका प्रोग्राम मैं यानी कि सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, ओ थैंक यू सो मच। और अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी यानी कि पर्वत राय जी और निर्मल राय जी और सभी की मैं साथ में बैठकर ही प्रोग्राम का आनंद में ले रहा हूँ, एकदम मज़ा आ रहा है होम थिएटर में, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और

0: क्यों पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए।
1: बहुत ही शानदार गीत, तो सुनते रहिए रेडियो होस्ट चार्ज, जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरोजी सेठी फाजिलका पंजाब से।
2: बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी, और ये फीडबैक सुन ही लेते हैं।
3: अमन सर जी, आज का प्रोग्राम शायराना हो रहा है।
2: अच्छा।
3: और सारे दोस्त शायरी एक से बढ़कर एक लिख कर भेज रहे हैं, और एक से बढ़कर एक गाने भी भेजे हुए हैं, और आप ले करके हमें सुना रहे हो, बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से, शुक्रिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुनी रहते हैं।
4: ये दुआ है मेरी रब से, मुझे रेडियो में सबसे
2: अच्छा।
4: रेडियो हॉट स्टार पसंद आए।
2: क्या बात है,
4: बहुत ही सुंदर गाना था। हाँ। निर्मल जी का फरमाइश, और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए, और आपको भी अमन सर जी बजाने के लिए
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। ओम नारायण राय लिखते हैं कि ये निर्मल जी का फेवरेट सॉन्ग है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी जी बिल्कुल। और निर्मल राय जी लिखते हैं कि हार मान लेना आसान है, मगर जीतने का मजा यानी तभी है जब दुनिया कहे तुमसे ना होगा, और अमन जी और कहें कि देखते जाओ, और हार कर जीतने वाले को ही यानी सिकंदर कहते हैं जी, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गाना बजा दिया, बहुत बहुत वेलकम है आपका। रवि जी लिखते हैं कि भाई निर्मल जी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया है। और रवि मोड़े जी लिखते हैं कि ये दुआ है मेरे रब से, बहुत ही सुपर पसंद है, और ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुनी लेते हैं।
5: ये दुआ है मेरी रब से,
2: अच्छा,
5: तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए।
2: ये जलील जी पसंद आएगी, आएगी
5: आशिकी पसंद आए। शानदार गाना है सर जी।
2: जी जी बिल्कुल। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि परवेज आलम जी रफीगंज से है। अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम। आफ्ताब आलम जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। लिखते हैं आफ्ताब आलम जी, जरा इनका पढ़ ही देता हूँ मैसेज, बहुत ही लंबा मैसेज है। लिखते हैं कि सजा कर अपने यानी लफ्जों का हसीन सा एक मकाम, और दिल की हर धड़कन को दे रहे हैं जो नया पहचान, और यानी कि वही है आज सबके प्यारे और दिल के करीब अमन सर, जिनकी आवाज से रोशन है रेडियो हॉटस्टार का हर आसमान। हाय, थैंक यू सो मच। आज शहराना शाम है, प्रोग्राम सुन के बहुत ही मजा आ रहा है, और ऐसे में मेरा भी हाजिरी कबूल फरमाइए जी। बहुत बहुत वेलकम है आफ्ताब आलम जी झारखंड से। इसी बात पर यानी कि परवेज आलम जी का गाना बहुत ही प्यारा है, मैं जरूर सुनवाऊंगा मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार।

0: बिल्कुल मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। और राय प्रभा जी लिखते हैं कि इन्हें प्यार में दिल तो टूट गया तो क्या हुआ। दोस्तों ने कहा भाई टेंशन मत ले, हमने भी हंसकर कहा अरे यानी कि टेंशन नहीं है, बस यानी वाईफाई का पासवर्ड याद नहीं है यार। ये हमेशा बेचारे यानी वाईफाई के पीछे पड़े रहते हैं। और सरवेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, परवेज आलम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
0: जी।
1: थैंक यू,
0: वेलकम जी है आपका। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि यह रेडियो हॉटस्टार की ताकत और प्यारी है कि हर लिसनर सिंगर और शायर बनता जा रहा है। और उंगलियां मैसेज करने के लिए यूं ही मतलब ये चल पड़ती हैं और होंठ आपकी तारीफ के लिए यूं ही बोल उठते हैं। हाय, थैंक यू सो मच दीपक कुमार गायकवाड़ जी। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।

0: सुनता
1: जी। और यहाँ अफ्ताब आलम जी लिखते हैं कि अजनबी से मुझे प्यार है, बहुत ही दिल का सॉन्ग है जी, दिल को छूने वाला। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। और मोहन भाई लिखते हैं कि सुपरहिट, बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई, यानी परवेज जी इतना प्यारा गाना सुनाया रफीगंज से, मजा आ गया सुन के। और एमडी परवेज जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। दोस्तों का भी शुक्रिया मैं फीडबैक देने के लिए। अजय भागा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: दिल चाहता है कि फिर अजनबी बनकर देखें,
1: अच्छा
2: तुम तमन्ना बन जाओ और हम उम्मीद बनकर देखें।
1: है, है, है।
2: काफी ही मेलोडियस गाना लगा ये, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है।
1: इंतजार है बिल्कुल। और गजानंद जी लिखते हैं कि मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, बेहतरीन लाजवाब गाना है, सुनकर मजा आ गया है। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि मुझे ये गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और नागेश्वर ठाकर जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि हम खिलौना तक मर्जी का नहीं खरीद सके, हम दिले ख्याल था कि मोहब्बत खरीद लाएंगे। अमन जी गुड इवनिंग, और रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को नागेश्वर ठाकर का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, एमडी फैज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम अस्सलाम। इसी बात में अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि शेख मोहम्मद ताहिर जी का है, सुनना चाहते हैं जाने मन तू खूब है, इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल जानेमन तू खूब है, दिल तेरा तुझ पे फिदा, तू मेरा महबूब है, महबूब है, महबूब है। और जी, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मजा आ गया। शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। निशांत राय भाई लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि यानी कि तेरे हॉटस्पॉट का पासवर्ड मांगा तो तूने दिल दे दिया और वाईफाई तो बाद में मिला, और यानी पहले प्यार का यानी सिग्नल मिल गया। वाह वाह वाह, मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और काजल झका जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों गाने बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं, मजा आ रहा है, सभी को थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है, जाने मन तो खूब है। इसी बात पर जो डिमांड है हमारे अशोक पाल जी का है, अशोक पाल जी सुनना चाहते हैं ये तेरा सजना सवरना, बिन साजन के बेकार है, सच में बेकार है ना।

0: ये तेरा सजना सवरना बिन सजन के बेकार है, और ऐसे फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं, मजा आने वाला है ना, एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिलने वाले हैं। राधा कृष्ण को देखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम है आपका भी। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि जाने मन तो खूब है, और ये वाला गाना भी बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सुन के। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, और ये फीडबैक।
1: अजय अमन सर जी, अशोक पाल जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और प्रियंका जी लिखते हैं कि मस्त मस्त मस्त गाना चल रहा है एकदम, और मजा आ रहा है। अशोक पाल लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और रॉय पर्वत लिखते हैं कि ये तो प्यार का दरिया में यूं बहता चला गया, और दिल था मेरा मगर तेरा होता चला गया, जी ऐसा है क्या। मोहन निवारी जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि सुपर गाने के लिए धन्यवाद देते हैं दोस्त को। और कालीचरण मास्टर क्या कहते हैं,
2: नमस्कार अमन भाई,
0: नमस्कार।
2: गाने चला,
0: आवाज नहीं आ रही क्योंकि बहुत आपकी आवाज में घड़घड़ाहट है, शायद ऐसा लग रहा है कि आप बाइक पे जा रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं, तो बाइक रोक कर फीडबैक दिया कीजिए प्लीज। मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाई, आप जुड़ गए हैं, मुबारक हो। और सत्यम भगत जी लिखते हैं कि जोर से चली हवा और उड़ गए आप, लिखते हैं कि जोर से चली हवा और उड़ गए आप, और रुक गई हवा तो गिर गए आप, वाह वाह वाह वाह क्या बात है। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि ये तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है, मजा आ गया गाने को सुनकर। और रवि मोहड़े जी लिखते हैं कि ये तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है, बेहतरीन सुपरहिट लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। और कमलेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है कमलेश चौधरी जी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, और साथ ही साथ अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं,
3: ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है, ये तो सच में बेकार है। और कहना ये था कि नियत काली नहीं है, और अगर आपको ऐतराज नहीं है तो मुझे भी ऐतराज नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा, इसकी बात तो भाई आप भी लाइन मार लीजिए मिसाल अंगद जी की तरह, क्योंकि ये लाइन मार रहे हैं, देखिए।
4: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ, और अमन सर जी आज 90 स्पेशल में मुझे एक गाना सुनने का है, और अमन सर जी आज का मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ। मैं आज बीड को सुबह जा रहा था बस में, तो बस में मैं सिर्फ अकेला, और मेरे साथ बस में थी पूरे 25 लड़कियां,
0: अच्छा।
4: और उनमें से मैं सिर्फ अकेला था अमन सर जी, तो अच्छा। इसी अवसर पर मुझे एक गाना याद आ गया अमन सर जी, उसी टाइम तो मैंने आज वही पे कहा था कि आज अमन सर जी को ये गाना मैं जरूर भेजूंगा,
0: अच्छा,
4: तो अमन सर जी गाने के बोल है लाइन मार ले रे बाबा लाइन मार ले,
0: ठीक है। आगे की कहानी आपने मुझे बताया नहीं, फिलहाल एक ही बार गाने पे आ गए, आगे की स्टोरी क्या हुआ वो भी तो बताइए, क्या अकेले थे तो क्या हुआ, कहीं आपकी कुटाई नहीं ना हुई है।
4: हेलो वही पे, तो अमन सर जी आज यही गाना मैं सभी दोस्तों को सुनवाना चाहूंगा, और अमन सर जी ये गाना जब रेडियो हॉटस्टार पर बजने वाला है, तो तब जब ये गाना बजेगा तब पूरा माहौल ही चेंज होने वाला है, क्योंकि गाना ही इतना अच्छा है, और वही गाना मुझे उसी समय याद आया अमन सर जी, तो मैं आपको ख्याल में रखे और आपकी सुंदरता की मूर्त को देखते हुए मैं ये गाना सिर्फ दोनों को आपको डेडिकेट करूंगा अमन सर जी। फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, सर्वेज भगत जी, मोहन नेवारे जी, हीरामन खिराड़े जी, अमोल कांबले जी, और आरजे वंशिका जी, और मेरे जितने भी रेडियो हॉटस्टार के सभी दोस्तों को मैं ये गाना डेडिकेट करूंगा, तो अमन सर जी गाना जरूर सुनवाना, और जब ये गाना आप सुनोगे तो इन गाने की कुछ पंक्तियां आप तो जरूर गाना, क्योंकि गाना ही बहुत मस्ती भरा है। और आज सुनील शेट्टी की जन्मदिन पर सुनील शेट्टी को बहुत बहुत बधाई।

0: वेलकम बैक। और गाना तो सच में धमाका मतलब कर दिया भाई। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि हमारी शाम को यादगार बनाने के लिए रेडियो हॉट अटैक की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी आपके प्रोग्राम की टीम को के सदस्यों का नाम जाना चाहता हूँ जी। तो मैं हूँ आरजे अमन और मेरे और यहाँ पे यानी कि 1:30 बजे शो आता है आरजे वंशिका जी का और रात के 10 बजे शो आता है आरजे आकांक्षा जी का। ओके बस यही है फिलहाल हमारी टीम। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि अमन जी आई रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू टू प्ले माय सॉन्ग। जी बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, आपके गाने जैसे आएंगे मैं जरूर प्ले करूँगा, टेंशन मत लीजिए। और ईश्वर भगत जी लिखते हैं कि ना तुम दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, लिखते हैं कि ना तुम दूर जाना ना हम दूर जाएंगे और अपने हिस्से की दोस्ती को निभाएंगे। बहुत अच्छा होगा जिंदगी का ये सफर, यानी तुम वहाँ याद करना और हम यहाँ मुस्कुराएंगे। आए है क्या बात है जी। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी मिसाल अंगद जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे निर्मल राय लिखते हैं कि रेडियो हॉट स्टार के सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और बिहार में अभी चल रहा है हर तिरंगा हर घर कार्यक्रम जी, अर्ज है तो यानी कि तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी जान है और इसके लिए जीना भी यानी कि इसके लिए जीना भी हमारे लिए गर्व की बात है और मरना भी सम्मान है। भारत माता की जय। बिल्कुल। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त मिसालंगा जी के वचन शानदार लगा है, मजा आ गया सुनकर, धन्यवाद देते हैं उनको। और मोहन भाई लिखते हैं कि शानदार गाना लगा मिसालंगा जी का, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और रवि जी लिखते हैं, आर के रवि जी के लिखते हैं कि तुझे पाने के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूँ, लिखते हैं कि तुझे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तेरे प्यार में जी और मर भी सकता हूँ और फिर भी तू नहीं मिली तो कोई गम नहीं, फिर भी तू नहीं मिली तो कोई गम नहीं, ये फॉर्मूला किसी और पर ट्राई कर सकता हूँ। हाँ ऐसे ट्राई करते रहिए, अच्छी बात है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं फिलहाल।
2: विशाल भैया जी, जब आप 25 लड़कियों के बीच अकेले बस में फंस गए थे तो उस टाइम पहले आपको बीन बजाना चाहिए था, जो नागिन होती वो बाहर निकल जाती, उसके बाद आपको बांसुरी बजाना चाहिए था, जो राधा होती वो आपसे चिपक जाती। तो आप इलेक्ट्रिक शॉट दे रहे हैं, लाइन मार रहे हैं। बहुत बढ़िया आपका गाना है और शायद मैं ये गाना पहली बार सुन रहा हूँ, नहीं लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा गाना लग रहा है।
0: हम तो सुने हैं इस गाने को, अच्छा लगा ये गाना। और वैसे भी और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार फरमाइश है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। निशांत राय वही लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा है। और यहाँ पे लिखते हैं यानी प्रियंका जी, बहुत ही मस्त गाना है, मजा आ गया सुन के। और राजा भगत जी लिखते हैं कि भाई साहब तो हमारे 25 लड़कियों के बीच में घबराए ये महसूस कर रहे होंगे जी। अब तो उनकी हालत इन वही बताएंगे। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना सुपर डिमांड के लिए। और विभूति भूषण शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि मजा आ गया इस गाने को सुनकर। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन जी हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं जी जी, बहुत बहुत वेलकम है और अगली डिमांड आप सबकी ही आने वाली है। गोपाल परिदार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और देवराय जी लिखते हैं कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है देवर, बहुत बहुत आपका वेलकम है। और और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर सॉन्ग था, मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे मंगेश देशमुख जी, मोहन नेमारे जी और एक और क्या नाम है उनका, मंगेश देशमुख जी और मोहन नेमारे जी और राजमल हिवराले जी, ये सभी की एक ही पसंद है, लाइन मारने के बाद दिल डिंग डोंग डिंग बोले, है कि नहीं, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ देवराज जी लिखते हैं कि ना दौलत चाहिए ना कार चाहिए, बस कोई ऐसा मिले जो बिल भर दिया करे। अच्छा और आय परमा जी लिखते हैं कि ये प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, यानी प्यार तो वह है अमन जी जो दिल से निभाया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: सर जी अमन सर जी तीन भाई का मिली जुली परमा इसमें शामिल किए हैं, तीनों भाई को धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी वेलकम करते हैं आपका भी। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और थोड़ा सा गाना सुनते हैं।

0: से है क्या, इतना तो मुझे समझा।
1: वेलकम बैक। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि वाओ क्या बात है, क्या पसंद है, दिल खुश कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मोहन नवारी जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी हम सभी का गाना प्ले करने के लिए। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि वाओ मजा आ गया इस गाने को सुनकर, डिंग डोंग डिंग डोले, वेरी नाइस सॉन्ग है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि मेरे जुले डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि इस खूबसूरत गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अजय भगत जी लिखते हैं कि सुपर डिमांड है जी, थैंक यू सो मच। और आत्माराम जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि गाना के साथ साथ आपका गुनगुनाना अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और नंदलाल जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की पसंद लाजवाब लगा, सुपर डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और फीडबैक सुनते हैं।
2: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद, और अभी जो गाना मेरा आपने सुनवाया अमन सर जी, आपका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी। और जितने भी दोस्तों ने इतना अच्छा अच्छे फीडबैक दिए, तो मैं सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद दूंगा। बहुत खुश हूँ अमन सर जी आज मैं, क्योंकि आज मुझे बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसी खुशी मिली है अमन सर जी। और जब मैं बीड़ को जा रहा था, तो हमारे गाँव का और बीड़ का अंतर है पूरे 25 मिनट का, लेकिन जाते समय उस उनमें से कुछ लड़कियों के साथ मैंने 2 रील्स जरूर बनाई है अमन सर जी, वो मैं रील्स आपको मैं ज़रूर शेयर करूंगा अमन सर जी। बहुत खुश हूँ, और लड़कियाँ भी पूरे 25 मिनट तक बहुत खुश थी। अच्छा, धन्यवाद।
1: अच्छी बात है। और यहाँ पे देवराज जी लिखते हैं कि हाँ, ये तो मैंने आपका मैसेज ऑलरेडी शामिल कर दिया है। आर के रवि जी लिखते हैं कि आज तो प्रोग्राम से ज़्यादा और शहरों का जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, अनिल कश्यप जी का प्ले करने वाला। अनिल कश्यप जी सुनना चाहते हैं

0: काफी है पहचान बनाने के लिए। और सर्वेश भगत जी दिल में बसते हैं जमाने के लिए। वाह क्या बात है सर्वेश भगत जी की लाइन, अच्छा लगा। आपने मंगेश दशमुख जी सिंह और जमन जी, मैं सभी दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहूंगा गाने पर फीडबैक देने के लिए। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि यह भी ममन जी बहुत ही लाजवाब गाना, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे बबीता जी क्या कहती हैं,
1: नमस्ते मन सर।
0: नमस्ते।
1: दिल दिल दंग दिल दंग डोलवा दिए हो।
0: अच्छा।
1: और लाइन भी मार रहे हैं सब, क्या बात, बढ़िया बढ़िया गाना सुनने को मिल रहा है। सारे दोस्त के धन्यवाद, इतने अच्छे से गाने सुनाए और अपने गाने में शामिल किए।
0: बिल्कुल। और इसी बात पर देवराय जी लिखते हैं कि दिल मेरा तुमसे ये मिलकर बेकरार है, और कहो ना प्यारे प्लीज। जी बिल्कुल। और अजय भगत जी लिखते हैं गजब की फरमाइश है जी, बहुत ही अच्छा लगा ये गाना। मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच। और नीतू सुरन जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, लिखते हैं कि अच्छा गाना है। और मोहन निवारे जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और गोविंदा खंडाटे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब पसंद है सुनवाने के लिए, थैंक यू सो मच। और विभूति भूषण सरन जी लिखते हैं कि मधुर संगीत। और निर्मल राय जी लिखते हैं कि सर्वेश जी का रेडियो यानी कि प्रेम देख कर तो दिल गदगद हो जाता है, हमारे सर्वेश भगत जी को मेरा सादर प्रणाम है। इसी बात पर और यहाँ पर रवि जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम जबरदस्त चल रहा है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी सुनीता गोप जी का है, और सुनीता गोप जी सुनना चाहती हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे। बिल्कुल एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं और फीडबैक भी बहुत सारे आने लगे हैं। पहला तो सर्वेश भगत जी का।
1: अमर सर जी, भाई हमको प्रोत्साहित करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं।
0: और यहाँ पे मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और राय यानी देव राय जी लिखते हैं कि न दौलत चाहिए न कार चाहिए, बस कोई ऐसा मिले जो बिल भर दिया करे। जी इस लाइन को आपने दो बार कह दिया ऑलरेडी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी के पसंद सुपर डुपर हिट लगी है, लाजवाब चॉइस है। और मोहन हमारे लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी के पसंद मुझे बहुत पसंद, धन्यवाद देते हैं सुनीता गोप जी को। अकबर खान जी लिखते हैं कि नताशा नताशा, ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है मेरे प्यार का। अच्छा अकबर जी समझ गया। और हमारे निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, चल रहा है, मजा आ गया सुन के। और ईशु भगत जी लिखते हैं कि किनारों पर मोती मिला नहीं करते, सॉरी लिखते हैं कि किनारों पर मोती मिला नहीं करते और दर्द में कभी गिला नहीं करते, हम अच्छे ना सही बुरे ही सही, लेकिन यानी कि पर हम जैसे बुरे भी हर किसी को मिला नहीं करते। और नीतू शरण जी लिखती हैं कि बहुत ही मस्त गाना है। और आमना खान जी जुड़ चुकी हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत आपका वेलकम है आमना खान जी। और ओके, और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड था, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। जागीर खान लिखते हैं कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, बहुत ही अच्छी पसंद है, थैंक यू सो मच। और ये फिर से
2: अमन भैया, एक्चुअली मैं बोलने ही वाला था मैसेज करके कि आप मेरा गाना 8:30 के आसपास बजाइएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पहले ही बजा दिया। मोबाइल मेरा हेलमेट में था और मैं गाना सुन लिया हूँ और थोड़ा सा लेट फीडबैक दे रहा हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद बजाने।
0: देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जो गाना जहाँ पे फिट बैठता है मैं वहीं प्ले करता हूँ, ये नहीं कि मैं 8:00 के बाद प्ले करूँगा। जिसका गाना जैसे रहेगा, जिस हिसाब में, जिस यानी किस सिचुएशन पर फिट बैठता है, मैं वहाँ पे बिना देर किए हुए गाना प्ले करता हूँ। अभी भेजिएगा अगर लगा कि हाँ मुझे गाना अभी प्ले करना चाहिए, मैं अभी प्ले कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। गाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाना कैसा है, बस। ओके, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद और दोस्त मोहन नेवारे जी का भी गाना हमें बहुत अच्छा लगा, और अभी जो गाना चल रहा है आप मुझे अच्छे लगने लगे, अमन सर जी बहुत शानदार गीत मुझे पसंद आया, इस गाने के जो शब्द है वो दिल में उतर गए अमन सर।

0: मुझे ये गाना बहुत पसंद आया। जिस भाई साहब की ये पसंद होगी तो मैं उनको दिल से सलाम करूंगा। अमन सर जी बहुत अच्छा गाना लगा
1: जी। मैं बता दूं ये गाना था मतलब सुनीता गोप जी के, है ना, तो वो भाई साहब नहीं है, वो बहन जी हैं आपकी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी की पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी है बाबू। और विभूति शरण जी लिखते हैं कि इस गाने को रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गाना अच्छा लगा है। और ईश्वर भगत जी लिखते हैं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनाते, रोने से यानी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, न कि दुनिया को जीतने का हौसला रखो, और एक हार से कोई फकीर और कोई एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और शिल्पा बेन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, मीना इब्राहिम जी यूएस से सुनना चाहती हैं मुझे प्यार होने लगा है। जी बिल्कुल मुझे प्यार होने लगा है।

0: बिल्कुल मुझे प्यार होने लगा है और बहुत सारे फीडबैक आने लगा है। और कमलेश चौधरी जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना, मजा आ गया, दिल खुश हो गया इस गाने सुनकर। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि यानी कि तीन रंगों में सजा भारत का विमान और तिरंगा लहराए तो बढ़ जाता है देश का मान, आई लव माई इंडिया, बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि औसम पसंद है। और सर्वेश भगत जी,
1: आरजे अमन सर जी, सुनीता गोप जी और मीना इब्राहिम जी, दोनों बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, दोनों बहन को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और मीना जी लिखते हैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और सुनीता गोप जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने मेरा भी गाना प्ले कर दिया है। और निशांत राय वो लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा, मुझे प्यार होने लगा है। और मोहन भाई लिखते हैं कि दिल दीवाना, ये वाला गाना मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिल्पा पे लिखते हैं कि मुझे प्यार होने लगा है, बहुत ही बढ़िया गाना है मुझे। और ओके, कोई बात नहीं है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। अकबर खान लिखते हैं कि न जाने कब दिल को तेरा ख्याल होने लगा और तेरी हर बात पर दिल बेकरार होने लगा, और पहले अजनबी थे हम दोनों एक दूसरे के लिए, अब लगता है कि मुझे प्यार होने लगा है। जी बिल्कुल। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं ये पसंद बहुत अच्छी लगी, इसी बात पर देवराज जी का पसंद सुनवाता हूँ कि कहो ना प्यार है। बिल्कुल, मैंने इनके कहा ना

0: बिल्कुल ये कहा ना प्यार है, वैसे फीडबैक भी बहुत सारा हुआ है। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं पहले इनकी।
1: अर्जय मसा जी, देवराज जी का गाना आप शामिल किए, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू। अपने गाने में शामिल किए उनको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: ये देवराज जी नहीं है, ये थे यानी देव इन रॉयल, देव रॉय जी, देव रॉय जी थे। ओके, और यहाँ पर रायो पर्वत जी लिखते हैं कि दिल से चाहा तो हर दुआ असर करती है, और सच्चा प्यार हो तो दूरियां भी कम लगती हैं। जी बिल्कुल। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नई सॉन्ग है, कहो ना प्यार है। और शिल्पा पहले लिखते हैं कि कहो ना प्यार है, बहुत बहुत बढ़िया गाना है, मजा आएगा सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि कहो ना प्यार है, बहुत ही प्यारा गाना लगा है। और निशांत राय बोल लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और ये फिर
2: हेलो अमन सर जी, नमस्कार। तो हम भी जुड़ चुके हैं आपके न्यू सॉन्ग में, और रेडियो हॉट स्टार में जो सबको दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और मोहन वाली कहते हैं कि बहुत ही लाजवाब पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद।

अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि गांव में शादी के टाइम में ये लाउड स्पीकर पर बजने वाला ऑल टाइम हिट सॉन्ग है जी। बिल्कुल जागीर खान जी लिखते हैं कि कहो ना प्यारे, ब्यूटीफुल चॉइस है, और ये भी सुनी लेते हैं क्या कहते हैं।

0: बहुत ही सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए, थैंक यू।
1: ओके, तो इसी बात अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला, अच्छा ये फीडबैक के बाद।
2: नमस्कार जी, देव राय जी, जी थैंक यू, और अपने गाने में शामिल किए उनको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
1: इसी बात अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का है, सर्वजीत सेठी जी सुनना चाहते हैं दो बोल कह के हम तो हारे हैं, बिल्कुल।

0: कि हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, और फीडबैक भी आ गया है।
1: जय मनसर जी, सरबजीत सेट्ठी जी अपने गाने में सुमन किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर।

0: यहाँ पे शांत रहे बोले जिली जी, बहुत ही लाजवाब गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और नीलेश मेरे का जिली जी वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम है बिट्टू कुमार जी आपका भी। और मोहन भाई लिखते हैं कि ये वाला सरोजी शेट्टी जी के पसंद मुझे पसंद आई, धन्यवाद सरोजी शेट्टी जी को। और शिल्पा बेन लिखती है कि दो बोल कह के हम तो हारे हैं, बहुत बढ़िया गाना सुनने को मिला है। और प्रियंका जी क्या कहती है सुन लेते हैं इनकी।
1: हेलो अमन जी, ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा था, जिसकी दो लाइनें मैं सुनाना चाहती हूँ। दो बोल कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, ओ हम तुम्हारे हैं। सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही लाजवाब गाना है। और रॉय पर्वत लिखते हैं कि हम तो हारे हैं अमन जी, आप हमारे हैं जी बिल्कुल। और काजल झकास जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: अमन सर जी मेरा गाना है तुम थे हमारे अब गैर हो गए, ये सुना दीजिएगा।
0: ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने आप अभी यानी कि सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजिएगा तो कोशिश करूंगा पहले। और दिलीप कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दिलीप कुमार जी। और इसी बात अगला जो डिमांड है हमारे गजानन सुरकार जी के पूरे ग्रुप का है और सुनना चाहते हैं सुन बेलिया। शुक्रिया, मेहरबान, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल सुन बेलिया, शुक्रिया, मेहरबानी। फीडबैक भी आ गया है मेरे पास, सुनते हैं।
1: अजय अमन सर जी, गजानन सोलकर जी का पूरे ग्रुप का भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे राज मोहम्मद जी क्या कहते हैं?
2: सॉन्ग रिकॉर्ड से मैं गाना नहीं भेज पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कहाँ से भेजा जाता है।
0: ओके, मैं आपको बताता हूँ सॉन्ग रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा। सबसे पहले रेडियो हॉटस्टार का जो सर जहाँ से आप मैसेज कर रहे हैं, मैसेज में उसी के बगल में है मोर, MORE मोर, सबसे नीचे लिखा होगा, दाहिने साइड में मोर लिखा होगा, MORE मोर पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा वो है सॉन्ग रिक्वेस्ट का। उसके बाद यानी कि लीडर बोर्ड होगा, उसके बाद यानी कि शॉर्ट आउट होगा, बहुत सारे चीज वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट, वहाँ से भेज सकते हैं मेरे पास, बिल्कुल आ जाएगा। और गजानन जी से अमन जी को प्यार भरा नमस्कार है। सभी साथियों को गाना को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। मोहन भाई लिखते हैं कि सुपर गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गजानन जी के ग्रुप को। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना सुन रहे हैं जो मिल रहा है। अशीर भाई बहन लिखते हैं कि सुन बेलिया बहुत ही प्यारा गाना है। और नीतू शरण जी लिखती है कि लाजवाब गाना, जी बिल्कुल। और रॉय पर्वत लिखते हैं कि तेरी हंसी मेरी पहचान बन गई, लिखते हैं कि तेरी हंसी मेरी पहचान बन गई और तेरी खुशी मेरी जान बन गई और तू मुस्कुराती रहे, बस यही दुआ है मेरी और बस यही दुआ बन गई। अच्छा ओके। और नीलेश मीरोकार जी लिखते हैं अमन जी हमारे ग्रुप का गाना चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक।
3: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
3: हमारे आदरणीय गजानन सालोकर जी का गाना आपने सुनवाया और उनके गाने में मुझे याद किया, तो मैं गजानन सालोकर जी का दिल से धन्यवाद दूंगा अमन सर जी। और आपने भी बहुत मज़े लेके गाना सुना अमन सर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जिस प्रकार गाने को गाया, जिस प्रकार गाने को सराहा, तो अमन सर जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और गजानन सालोकर जी आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।
0: Okay, इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो हमारे MD जलील जी का है। जलील जी सुना चाहते हैं दिल तेरा आशिक का ये प्यारा गाना, कि प्यार के

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे हैं। आप प्रमोद कुमार लिखते हैं कि हर रेस्पेक्टेड गजानंद ग्रुप की फरमाइश अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। और दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन सर जी, मैंने सॉन्ग रिक्वेस्ट में सॉन्ग डाल दिया है।
0: तो आपने सॉन्ग ऐसा डाला है कि हमसे तुम दोस्ती कर लो, उसको मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि दोस्ती वाला सीजन निकल चुका है, चूंकि यानी कि स्टोरी आगे बढ़ चुकी है। कोई और गाना सोचिए जो यानी कि प्रोग्राम में फिट हो सके। अब मैं दोबारा पीछे नहीं जाऊंगा दोस्ती करवाने के लिए। ओके, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा गाना भेज दीजिएगा। ये फीडबैक
2: अर्जय अमन सर जी, MD जलील जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और हमारे रॉय परमज जी लिखते हैं कि यानी कि किस्मत ही बड़ी अजीब सी चीज है जनाब, और जिसे चाहो वो दूर निकल जाता है और जिसे ना चाहो वो है बोलकर दिल में घुस जाता है। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने, बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि हर किसी को अपनी अपनी अपनी किस्मत से शिकायत क्यों होती है, हर किसी को अपनी किस्मत से शिकायत क्यों होती है। हम जिसे पा नहीं सकते उसी से मोहब्बत क्यों होती है, उसी से मोहब्बत क्यों होती है, क्यों है ना। और निशांत राय बोले जी लिखते कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है जी, बिल्कुल। और गजानंद जी लिखते हैं कि प्यार के बदले प्यार मिलेगा, बहुत बेहतरीन गाना है। और जुड़ चुके हैं यानी कि ब्रजेश यादव जी, बहुत बहुत वेलकम है ब्रजेश यादव जी आपका।

0: जवानी। बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे परम मित्र गजानन सारोकार जी के ग्रुप का, और गाने में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके जी, और एमडी जलील जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, मेरा गाना प्ले करने के दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि हमारी नींद में भी रेडियो हॉट स्टार का आपका प्रोग्राम बजता रहता है मंसर जी, और कानों में आपकी आवाज़ सुनाई देती है। जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर बोले कि इसकी कोई दवा नहीं है, यह तो रेडियो हॉट स्टार का प्यार है, रोज सुनिए। हाय थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। और ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों का नाम ले लीजिए, गीता अनीता जो जलंधर से हैं। अच्छा, बहुत बहुत वेलकम है गीता अनीता जी का भी। और किशन पाल जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए जी, बहुत बहुत वेलकम। इसके बाद अगला जो डिमांड है वो काजल झक्का जी का है, सुनना चाहती है और स्पेशली डेडिकेट मिट्टू मियाँ जी को है, तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए, सभी दोस्तों के लिए भी है लेकिन स्पेशली मिट्टू मियाँ।

0: अरे कैसे छूले यार, बहुत दूर हो ना, ये फिर गए।
1: अरजे अमन सर जी, काजल झा जी, बहन जी, अपने गाने में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और यहाँ पे नीतू शरण जी लिखती हैं कि यानी कि प्यार के बदले प्यार मिलेगा। वाह क्या गाना है, सच में मजा आ गया सुन के इस गाने को। और अजय भगत जी लिखते हैं कि मोहब्बत वो नहीं जो हर किसी से हो जाए, मोहब्बत तो वो है जो सिर्फ एक दिल में बच जाए, और तेरी यादों से ही तो मेरी हर शाम सवर जाती है, और तेरा नाम आते ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और मोहब्बत में शब्द भी कम पड़ जाते हैं जब एहसास दिल से जुड़ जाते हैं, और जिसे जिसे दिल ने चाहा उसे तो खोना मत, मोहब्बत तो कभी अधूरा मत छोड़ना, बिल्कुल। और रवि जी लिखते हैं अमन जी आज तो बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, अच्छा थैंक यू सो मच। और मीरा जी लिखते वाह क्या गाना है, क्या पसंद है, थैंक यू सो मच इस प्यारे से डिमांड के लिए। और नीलेश वीरकार जी लिखते हैं छूले छूले शानदार गाना मुझे सुनने को मिला, मजा आ गया है। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि काजल जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको। और राय पवन जी लिखते हैं कि छूले छूले आ मुझे छूले, लाजवाब गाना मजा आ गया है। गजानंद जी लिखते हैं कि काजल जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने में शामिल करने के लिए। और निशान तो राय बोले जी लिखते हैं कि अच्छा यानी कि उषा और यानी कि पापा का नाम यानी मधुकर है, ओके जी। तो यानी आप दोनों का भी बहुत बहुत वेलकम है। आर्य सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी नाम उनका क्या नाम था उनका, विष्णु चंद्र जी, अच्छा विष्णु चंद्र जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को, और ये गाना बहुत ही प्यारा है।

बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

0: विष्णु जी, वाह मजा आ गया।
1: क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?
0: क्या बात है?

0: मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस
1: बस
0: मैं तुमको सोच रहा हूँ,
1: बस
0: बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो,
1: सच में
0: तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: दिल ने फिराज, यादों का मौसम, यह गाना बहुत प्यारा लगा है। और निशांत राय बोले जी लीजिए कि ये गाना मेरे अपनी इन वाइफ को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा ही सीन है। अच्छा ये बात है, ये फिर दे
1: मान सर जी, विष्णु चंद्र जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर
0: जी। वेलकम है आपका भी। और जाकिर खान लिखते हैं कि दिल ने फिर तेरी यादों का मौसम आया, बहुत खूबसूरत पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और नीतू सुरंग जी लिखते हैं कि गाना बहुत अच्छा लगा जी। और सुजाता सॉरी यहाँ पे सूरज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत मतलब का मैं सूरज गुप्ता जी आपका भी। और अशिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये विष्णु जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद करते हैं उनको। राय पर्वत जी लिखते हैं कि मेहनत की राह पर जो चलता जाता है वो अपनी किस्मत को भी बदल पाता है, और तरक्की तो उसी के कदम को चूमती है जो कभी हार नहीं मानता है जी, बिल्कुल। और गजानन जी लिखते हैं कि सुरेश ओबराय अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में लाजवाब गाना, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और तैयब अंसारी जी जुड़ चुके हैं यानी चोलापुर से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं तैयब अंसारी जी, बहुत दिन बाद आए हैं, कहाँ थे आप बताइएगा जरूर। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी ये पसंद है, बहुत अच्छा लगा गाना, धन्यवाद देते हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी मैं अपने मामा जी जो कि वो यानी कि खंडवा मध्य प्रदेश में रहते हैं, उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जय श्री मेरे यानी दादाजी, और उनके नाम है राजेश पटेल यानी प्रमोद पटेल, और इन भैया यानी पटेल और इन विनोद पटेल जी, अच्छा इन भैयू पटेल और विनोद पटेल जी जी जी, बहुत बहुत वेलकम है सभी दोस्तों का। और नीलेश गुरुकार जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है जी, बिल्कुल। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: हाँ तो अमन सर जी अब डाल दिया है एक सॉन्ग सुनने लायक, शायद इसको देख लेना।
0: ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और रवि मोहरे जी लिखते हैं कि दिल ने फिर आज तेरी यादों का मौसम आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया इस गाने को सुनकर। इसी बात का अगला जो डिमांड हमारे नंदलाल यादव जी का है, और ये गाना बहुत प्यारा है।

0: बहुत सारे आए हुए हैं और मेरे पास सर्वेश भगत जी का पहले
1: अजय अमर सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर
0: जी। और हमारे बाबूलाल जी लिखते हैं, नंदलाल जी का डिमांड बहुत ही प्यारा है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग जी, बिल्कुल। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि आपकी पसंद लाजवाब है, मजा आ गया सुन के। नंदलाल यादव जी और राय पर्वत जी लिखते हैं कि मुस्कुराते रहो, ये जिंदगी की पहचान है, हर सुबह एक नई उम्मीद, हर शाम एक अरमान है, जो दिल से खुश रहे उसकी दुनिया ही सबसे महान है। वेरी नाइस सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते मास्टर जी, आज मेरा गाना नहीं, आज आपने गलत गाना भेज दिया, हरियाणवी गाना भेज दिया है, वो गाना प्ले नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारा गाना। अगली जो डिमांड है हमारे शाहिद अंसारी जी का, शाहिद अंसारी जी सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा गाना, इंजॉय कीजिए।

0: आज प्यार की पहली गुफ्तगू पे आ गए। वह क्या गाना, सच में पहली बार मैंने ये गाना को सुना, मजा आ गया सुनकर और फीडबैक भी सुनते हैं।
1: अमन भैया, मैं कुछ देर पहले बाइक चला रहा था इसलिए कुछ गानों पे फीडबैक नहीं दे पाया।
0: अच्छा।
1: गाने अच्छे चल रहे थे और अभी मैं घर पहुंच गया हूं, तो एक गाना इसी बीच चल रहा था उसी पे मेरा कमेंट है कि प्यार के बदले प्यार मिलेगा, दिल के बदले दिलदार मिलेगा, और मांगोगी मुझे मुझसे मोबाइल।
0: अच्छा।
1: तो उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड रेडियो हॉटस्टार मिलेगा।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: उसमें आपकी पूरी हर मनसा होगी।
0: अच्छा।
1: दिन में आरजे बंसी का, शाम में आरजे
0: आकांक्षा होगी। ओके, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपकी ऑडियो बीच में रुक जाती है, शायद एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है। एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए प्लीज, तो आपकी वो पूरी ऑडियो मेरे पास आने लगेगी। ओके, थोड़ा सा गाना सुनते हैं और

0: बिल्कुल गुफ्तगु पे आ गए हैं। और तैयब अंसारी जी लिखते हैं, अमन जी हम तो प्रोग्राम आपका रोज ही सुनते हैं और फीडबैक देने के लिए समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं अब तो मिल गया ना समय। और सरवेर भगत जी,
1: जय अमन सर जी, साहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: और बाबूलाल जी लिखते हैं, साहिद जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, लाजवाब। नीतू सुरन जी लिखते हैं कि ये पहले आप कहाँ थे और ये फिर ये वाला गाना, वाह वाह क्या गाना है, सबसे दिल खुश हो गया इस गाने में। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है साहिद जी का, शानदार डिमांड। और मीनू जी लिखते हैं, वाह क्या बात है साहिद जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग, मजा आ गया। राय प्रमोद जी लिखते हैं कि मेरा गाना कब प्ले होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है आपका गाना कौन सा है, पहले मुझे देखना पड़ेगा। और आत्माराम जी लिखते हैं कि ये नाइनटीज के सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू साहिद जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे, यानी प्रमोद कुमार जी का है। और प्रमोद जी, एंजॉय द ट्रैक।

0: सुपर लाजवाब सॉन्ग सुनकर आनंद भी आ गया।
1: ओके धन्यवाद देते हैं आपको। और गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय प्रमोद जी की पसंद बहुत शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं, मोहब्बत जो तुमसे हुई है पहली है और आखिरी है। निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और रवि जी लिखते हैं कि ये पर्वत जी का सॉन्ग है, कम से कम नहीं तो उनका जो गाना है ना वो यानी कि सैड गाना है। अभी अभी मैंने ये देखा, जो जाम से पीता हूँ तो चढ़ जाती उतर जाती ऐसे कुछ है, तो उनके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, वो सैड गाना तो आखिरी में जाता है ना इसीलिए। दत्ता जी लिखते हैं कि नमस्कार अमन जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम है आपका भी। और पर्वत राय लिखते हैं कि अमन जी आंखों में ऐसा नशा है, एक नजर पे तो दिल बेकाबू सा हुआ है, और पास आ जाए तो मौसम रोमांटिक हो जाए, क्या बात है। और शाहिद जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सॉन्ग विनर बनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और जी बिल्कुल भेज दीजिए अपना दूसरा गाना। और रवि मोहन जी लिखते हैं कि मोहब्बत जो तुमसे हुई है दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सर्वेश भगत जी और सैयद यूनु जी सुनते हैं।
2: नमस्कार अमन सर, मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल, तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है आवारगी और गाने का बोल है बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
3: आरजे अमन सर जी सुशन दया नमस्कार नमस्ते जी, आज हमारा फरमाइश का फिल्म है आवारगी और गाने का बोल है बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया।
1: अच्छा।
3: हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंजा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं, हमारा परिवार सतीश भगत अहमद भगत भट्ट किशोर भगत आनंद शेखर अनंत कुमार सुनील कुमार मणि कुमारी सूरज कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख भाई जी आत्माराम पाटिल जी सैयद यूनुस जी आर जे अमन सर जी सुंदरता किमरे जी आर जे आकांक्षा जी आर जे वंशिका जी आर जे रत्ना जी आर जे एम एस परमार जी और सभी आर जे
1: सभी
3: सभी लिसनर इसमें शामिल सभी को सुना दीजिए।

0: बिल्कुल बाली उमर ने मेरा हाल वो किया और गजानंद जी से गादानी है अशोक देशमुखी सरोज भगत जी आत्माराम जी और सैयद उमर जी के पसंद अवार की फिल्म का शानदार लगा। मोहम्मद अजीज लता मंगेशकर की आवाज़ में मजा आ गया गाना सुनकर और राय पर बच लेते हैं अमन जी अजय जी का गाना यानी सैड नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ एक दो गाने के बाद उनका गाने को प्ले करने की कोशिश करता हूँ। और निशांत राय बोल लिखते हैं कि बाली उमर ने मेरा हाल वो किया, बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और शिल्पा पे लिखते हैं कि बाली उमर ने मेरा हाल वो किया, वाह बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं,
1: वाह क्या बात है, सर्वेश भगत जी की फरमाइश, सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश, एकदम दिल को छूने वाला सॉन्ग सुनकर मजा ही आ रहा है, सुपर सॉन्ग लाजवाब।
0: ओके और यहाँ पे दादा जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों का गाना मुझे सुपर हिट लगा है। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही नाइस सॉन्ग है जी बिल्कुल। और आत्माराम जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गाना प्ले करने के लिए। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि नमस्ते हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। मीना जी लिखते हैं कि मुझे ये गाना बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच सरवेश भगत जी सभी दोस्तों का। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस मस्त गाने के लिए। और समुद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है जी। इसी बात का अगला जो डिमांड है वो दिगंबर जी का है, दिल तू ही बता और कहाँ था छुपा, बिल्कुल

0: वेलकम बैक। और यहाँ पर रवि मार्जी लिखेंगे, बाली उमर ने मेरा हाल वो किया, सर्वेज भगत जसू दसमुची और सभी दोस्तों की मिली जुली डिमांड शानदार लगी है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सरोज भगत जी, अशोक दसमुची और सभी दोस्तों की पसंद शानदार लगी, थैंक यू सो मच डेडिकेट करने के लिए। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, हमारा चारों भाई का फरमाइश सब शामिल कर दिए, अशोक देशमुख भाई जी और आत्माराम पाटिल जी, सैयद जी और हम सभी भाई का गाना अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, धन्यवाद, थैंक यू, लाख लाख धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी देखिए वो फीडबैक कैसे शामिल करेंगे, आप रेडियो हॉट स्टार के जो यानी कि वहाँ पे चैट बॉक्स है वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा तो वो मैसेज वहाँ से शामिल करती हैं। अगर आप मुझे जैसे मैसेज कर रहे हैं ना यहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो वो मैसेज वहाँ पे शामिल नहीं कर पाती हैं, उनकी आदत है वहाँ पे चैट बॉक्स से मैसेज को लेने की, तो वहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, जरूर आपके मैसेज को शामिल करेंगे 100%। ओके।

0: सॉन्ग
1: जी
0: बहुत ही सुंदर फरमाइश।
1: ओके जी, और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि दिगंबर जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, ये दिल तू ही बता मजा गया। और नीतू शरण जी लिखती है कि जी हाँ गाना सुनते सब कुछ अच्छा लगता है। इसी बात पर अगला डिमांड नीतू शरण जी का ही है और सुनना चाहती है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। इंजॉय कीजिए इस गाने को। शिल्पा बेन लिखते हैं कि दिल तू ही बता गाना बहुत अच्छा लगा है।

वेलकम बैक, फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए मेरे पास। और यहाँ पे रवि जी लिखते हैं कि मुस्कुरा जाता हूँ अक्सर मैं अपनी तन्हाइयों में भी, जब याद आती है कि वो मेरे यारों की नादानियाँ। और लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, पर यानी सच्चा यार हो तो हर दिन रंग

0: सर गुड इवनिंग सर्विस भगत जी की जो फरमा चल रही थी वाली मोड़ पर भी सलाम, बहुत ही शानदार, बहुत ही झक्कास। ऐसे ही सुनते रहिए अमन सर के साथ रेडियो हॉट स्टार। मैं प्रेम सिंह साहू जी
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। अब प्रेम सिंह साहू जी और राय पर बजरी से के अमन जी, जी आपको मैंने ऐसा लिंक कर दिया है, आप देख लीजिए। मैंने कहा यस और निशांत राय बोले जी लिखते के वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, और दत्ता जी लिखते कि नीतू जी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद देते हैं नीतू जी को। और दिगंबर जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: हेलो अमन सर जी, हमारा सॉन्ग प्ले किया, लाख लाख धन्यवाद।
1: ओके जी, और यहाँ पे अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं।
3: आज गाने तो बहुत बज रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा जो आज का सॉन्ग ऑफ द डे है ये वही है।
1: अच्छा।
3: मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। अच्छा। बहुत ही सुंदर
1: जी, अभी सभी गाने एक से बढ़कर एक होने वाले हैं, अभी सुनते रहिए ना। अच्छा, शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा फेवरेट गाना है, एक्सीलेंट सॉन्ग। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना सुनवाने के लिए। साथ ही साथ मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि आपकी आह और मेरी वाह, यही तो है रेडियो हॉटस्टार जो दीवा ना बना दे। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही नाइस सॉन्ग है जी, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। ये कुमार शानू की आवाज़ में बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिला, मज़ा आ गया सुनकर। रवि महाराज जी लिखते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, बहुत ही बेहतरीन नगमा है। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। इसी बात पर दत्ता करम जी गाना सुनवाते हैं आप सबको, लेकिन दत्ता करम जी गाना कहाँ गया जी, मुझे ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दत्ता करम जी गाने को हम बाद में चलाएंगे, फिलहाल सुनते हैं हमारे इन भाई साहब गाना जो बहुत देर से छटपटा रहे हैं, जो जाम से पीता हूँ उतर जाती है। आते इस गाने के बाद तो हम दत्ता जी का गाना प्ले करेंगे।

0: वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार्ट, जो आपको दीवाना बना दे। और फिर देखिए काजल देखा जी थे कि और मेरा दिल भी कितना पागल है, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और राय परमा जी लिखते हैं कि आई लव यू अमन सर जी, मेरा गाना लेकर के ओ आई लव यू टू मेरे भाईजान। और रवि जी लिखते हैं कि यानी कि परमा जी का चेहरा पर खुशी दिख रही है, अच्छा थैंक यू सो मच। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है। और गजानंद जी लिखते हैं कि जो जाम से मिला हूँ तो उतर जाती है जी, लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं भाई। और
1: अमन सर जी, पर्वत राय जी अपने गाने में शामिल किए, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच इस खूबसूरत फरमाइश के लिए, थैंक यू सो मच। और अजय भगत जी लिखते हैं अमन जी जैसे थैंक यू यानी पर्वत राय जी का गाना प्ले करने के लिए। और समुदा सिंह जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है, आज मैं पहली बार ये गाना सुन रहा हूँ, मुझे मजा आ गया इस गाने को सुनकर। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे दत्ता करण जी का, जो मैं भूल गया था,

0: और फीडबैक में मेरे पास आए हुए शामिल करता हूँ मैं।
1: जय अमन सर जी, दत्ता कदम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: कभी और हमें दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी आज के प्रोग्राम में ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो आने किसी रेडियो पर बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि दत्ता कदम जी का गाना मुझे अच्छा लगा। इसी बात अगला जो डिमांड अजय भगत जी का सुनवा रहा हूँ मैं आपको, शाम है धुआं धुआं।
2: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
3: नाम मेरा शबनम है पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
4: दिल जले, दिल जले और लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और शामिल करता हूं मैं। और सबसे पहले तो दत्ता जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जी गाना प्ले करने के लिए मेरा। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दत्ता जी के पसंद लाजवाब लगी है। और गजानंद जी लिखते हैं कि अजय भगत जी के पसंद दिल जलेगा, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और राय पर्वत जी लिखते हैं अमन जी अजय जी तो दिल जले निकले, जी जी बिल्कुल। और सर्वेश भगत जी
1: अजय अमन सर जी अजय भगत जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: और अशिल्पा बहन लिखते हैं कि शाम में धुआं धुआं बहुत ही बढ़िया पसंद है। और अजय भगत जी लिखते हैं अमन जी थैंक यू सो मच, हमें दोस्त के साथ हमारे गाने को भी पसंद करने के लिए और प्ले करने के लिए। और सूरज यहाँ पे सूरज गुप्ता जी लिखते हैं कि जियो मस्त लग रहा है अमन सर जी, क्या बात है। और नीतू शरण जी लिखती हैं कि शाम में धुआं धुआं बहुत ही अच्छा गाना लगा है, रिक्वेस्ट करने के लिए धन्यवाद इस गाने के लिए। और रवि जी लिखते हैं कि वो बहुत से लोगों में कहीं कि मेरा भी तो नाम ही नहीं। अच्छा ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है जाकिर खान जी का। जाकिर खान जी इंजॉय कीजिए। ओ माय गॉड, जाकिर खान जी का गाना डाउनलोड नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं है। जो आज के हमारे विनर है यानी शाहिद अंसारी जी, इनका गाना प्ले कर रहा हूँ फिलहाल। इसके बाद कोशिश करता हूँ कि जाकिर जी का गाना डाउनलोड हो जाए।

0: बिल्कुल। और गजानन यानी के परिदार जी लिखते हैं कि कहाँ गए इनका मैसेज? अच्छा जी बिल्कुल, आपका आपका रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंचा हुआ है। जाते जाते जरूर आपका गाना को मैं प्ले करूंगा, टेंशन मत लीजिए। आज परम जी लिखते हैं आज गाना बहुत अच्छा अच्छा लगा है, और निशांत राय बोले जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, और राय पर्वत जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, और सर्वेश नगर जी
1: अजय अमन सर जी शाहिद अंसारी जी आप विनर बनने के लिए आप अपना गाना में शामिल करने के उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: ओके जी। और हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी मैं ओमकेश्वर और उज्जैन नगरी के पास रहता हूँ जो बाबा महाकाल की नगरी कहलाती है, और मध्य प्रदेश की यानी पावन नदी यानी कि माँ नर्मदा जी जो यानी कि शंकर जी की इन बेटी है हमारे यहाँ ही बहती है। और क्या सावन का कोई गाना जी? अभी एक्चुअली मैंने इससे पहले यानी कि सावन का थीम मतलब रखा था, और अब गाना भेजते तो अब तो बहुत समय हो चुका है, जाने का समय हो चुका है, इसके लिए माफी चाहूंगा। अनिल जी लिखते हैं कि आज तो गर्मी भी है और मच्छर भी परेशान किए हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, छत पे चल जाएगा। फिलहाल अगला गाना जो हमारे जाकिर जी का है सुनवाते हैं।

0: मेरे पास अगला जो डिमांड में है वो मैं प्ले करूंगा, लेकिन फिलहाल फीडबैक है मेरे पास, ये सुनते हैं।
1: हेलो सर, ये जो आपने सॉन्ग सुनाया ये कुछ अलग ही टाइप का सॉन्ग था, और जो कि मैंने फर्स्ट बार सुना है, कंबल सर्दी, बाकी अभी तो गर्मी ही हो रही है, बाकी सॉन्ग बहुत बेस्ट था, और मतलब सॉन्ग सुन के कुछ हंसी सी भी आ रही थी, लेकिन अच्छा। गाना अच्छा था और सभी सॉन्ग ही बहुत अच्छे थे। थैंक यू,
0: धन्यवाद आपका भी। और ये
2: जय अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जाकिर जी का चॉइस लाजवाब लगी है, बेहतरीन लगी है। और अनिल जी लिखते हैं कि दीवाना हूँ मैं तेरा, गाना अच्छा लगा है। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि जाकिर जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और मैं आपको व्हाट्सअप कॉल ही कर रहा हूँ, लेकिन आपका मुझे व्हाट्सअप कॉल इस पर लग नहीं पा रहा है भाई। ज़रा मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे प्लीज़। नंबर है 9135841232, यानी 9135841232। आपका जो नंबर है मैं इसी पर आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नंबर दिख नहीं रहा है कहीं भी। नो यूजर फाउंड, ऐसा मुझे कुछ आ रहा है। एक मिनट और चेक कर लेता हूँ, अपने पास भेज कर आपका देखता हूँ, कुछ शायद हो जाए। नो सर, इस नंबर पे आपका ये व्हाट्सअप नॉट अवेलेबल है। प्लीज अपना मुझे दूसरा नंबर, जो मुझे आपका व्हाट्सअप नंबर है, मुझे जरूर सेंड करें प्लीज, जल्द से जल्द कर दें तो अच्छा रहेगा। और नीतू जी लिखती हैं कि ये पहली बार मैंने गाना सुना, अच्छा लगा मुझे, और ये फीडबैक मिला है।
3: सर जी, ये गाना नहीं है मेरा।
0: अच्छा,
3: मेरा गाना है चुन लिया है लाखों में जिसे।
0: ओके, तो ये था गाना, तो कोई बात नहीं, अब तो गलती हो गई है मुझे। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, गाना प्ले कर दिया है। दत्ता जी लिखते हैं कि जाकिर जी का डिमांड मुझे अच्छा लगा है। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और अब तो चुन लिया है लाखों में जिसे, अब तो देखना पड़ेगा मुझे दोबारा। फिलहाल अगला जो गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए इस गाने को। और इसे लेकर आए हुए हैं हमारे कौन से दोस्त, ये यानी ईशु भगत जी। और ईशु भगत जी सुनना चाहते हैं फेविकॉल से।

0: ओके तो इनको पहले कॉल लगाते हैं हम। जी भाई राय परवा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और ये नंबर है तो मैं किसी और नंबर को ढूंढ रहा था, तो कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं?
1: आई लव यू,
0: लव यू।
1: जब से मैं आपका प्रोग्राम में जुड़ा हूँ अमन जी, मुझे बहुत ज्यादा ही मन लगता है।
0: अच्छा,
1: तो थैंक यू सो मच फॉर कॉल मी।
0: वेलकम जी। और सबसे पहले तो आप उस समय से लगातार मैसेज यानी किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे टॉप यानी लीडर में बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है
1: जी।
0: और एक्चुअली क्या है कि जो लोग मैंने सबसे ज्यादा मुझे मैसेज करते हैं,
1: बोलना चाहूंगा अमन जी।
0: हाँ बोलिए।
1: सर्वे जी को भी आई लव यू बोलना चाहूंगा, और जितने भी श्रोता गण मुझे सुन रहे हैं सभी को लव यू।
0: ओके जी, चलिए अच्छी बात है आपके यानी प्यार के लिए। और तो राय पर्वत जी आज आज यानी क्या सुनना पसंद करेंगे पहले बता दीजिए।
1: मैं अमन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि
2: आर के रवि जी
1: का सॉन्ग प्ले कर दीजिए, इसके लिए मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद।
0: आर के रवि जी का चलिए सुनवा दीजिए, उनका गाना एंजॉय कीजिए।
2: हेलो अमन जी।
0: जी जी बोलिए
2: सर, मैं अजय भगत जी
0: बहुत बहुत वेलकम है, बताइए
2: सर। वही बस मेरे दोस्त आज टॉप पे आया है, मुझे बहुत खुशी हुई
0: जी। बिल्कुल, आप भी आ सकते हैं, आप भी मैसेज कीजिए लगातार।
2: ठीक है सर, मैं बात करता रहता हूँ, मुझे लगता है कि आप मेरे करीबी हैं, दिल से करीबी हैं। ठीक है,
0: कोई बात नहीं जी,
2: मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं समझता हूँ कि आप मेरे यानी कि रिलेशन में ही है, समझ लीजिए।
0: बिल्कुल। तो चलिए
2: रवि जी, ठीक है सर, ठीक है सर।
0: बोलिए। हाँ बोलिए। मैं सुन रहा
1: हूँ। आपके लिए एक शायरी है। अमन जी की मुस्कान में एक अलग ही बात है। अमन जी की मुस्कान में एक अलग ही बात है, उनसे मिलकर लगता है जैसे खुशियों की बरसात है।
0: क्या बात है, क्या बात
1: है अमन जी, यही दिल से जुड़ा है।
0: क्या बात है भाई, आप लोग से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है तो मैं और ज्यादा बातें करता हूँ सबसे।
2: ठीक है सर, एक बार यीशु भगत से भी बात कर लीजिए।
0: हाँ,
1: ठीक
0: है, जी।
3: हेलो अमन जी।
0: हाँ जी नमस्ते यीशु जी।
3: नमस्कार यीशु भगत
0: जी, अभी आपका गाना प्ले हुआ था, बहुत ही ढूंढ कर लाया थे गाना भाई, फेविकोल से
3: गाना बजाने के लिए।
0: ओके जी, वेलकम है।
3: ठीक है अमन जी,
0: ओके एंजॉय कीजिए गाने को।

0: वेलकम बैक। गाना सच में बहुत अच्छा लगा यार। और यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छी चॉइस है। वाह क्या चॉइस है, मजा आ गया सुन के इस गाने का। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, ईशु भगत जी अपने गाने में शामिल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी है आपका भी। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि आपने झुमाया, अभी और झुमाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है, धन्यवाद देते हैं। और राय परवा जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी, आई लव यू टू। और यहाँ पे विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि अर के रवि जी की शायरी लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये हम प्ले करते हैं अमीना खान जी का। अमीना खान जी एंजॉय कीजिए।

माय गॉड, आज तो मैं आरजे यानी के आकांक्षा जी का नंबर ऑन करना भूल गया था। ठीक है, मैं अभी ऑन करता हूँ उनका नंबर को और आप लोग उनके पास डिमांड भेज सकते हैं, क्योंकि मैं देर करके मैं ध्यान ही नहीं दिया था कि यार मुझे कितना समय हो चुका है। आई एम सॉरी। ओके जी,

0: एवं नारायण जी लिखते हैं कि रेडियो हॉट अटैक सभी दोस्तों गुड नाइट। अभी मत जाइए, आरजे खानसा जी का शो आने वाला है। निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: नमस्कार जी, अमीना खान जी अपने गाने में शामिल किए।

0: बिल्कुल मेरे महबूब, तुझे वादा निभाना होगा। फीडबैक भी आया हुआ है मेरे पास, बहुत सारे शामिल करता।
1: जय अमन सर जी, MD फैज आलम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और बाबूलाल जी मिलते हैं जी, यहाँ मत भेजिए, उधर वहाँ सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिए बाबूलाल अंजना जी, उनके लिए सॉन्ग। और निशान राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना था, मजा आ गया सुन के। और गोपाल परदास जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और प्रियंका जी लिखते हैं कि वाह क्या चॉइस है, सच में दिल खुश कर दिया है। और ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि मैं भी रेडियो हॉट स्टार का दीवाना बन गया हूँ, और इसका कारण है अजय भगत जी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, हमारे निशांत राय इन बोले जी का है और दिनेश कुमार राय जी का है। ये लोग सुनना चाहते हैं रिम।

आखिरी जो डिमांड होगा वो यानी नाम है रश्मि जी, और रश्मि जी का गाना होगा यानी इन तो चलू। बिल्कुल मैं गाना प्ले करके जाऊंगा क्योंकि ये गाना मेरा फेवरेट गाना है, कैसे छोड़ सकता हूँ। और आज सुनील शेट्टी जी का जन्मदिन भी है तो उनको समर्पित रहेगा ये गाना।

बाबूलाल जी आपने मुझे गाना भेज दिया है, दोबारा भेजिए, मैं इसे करता हूँ रिजेक्ट क्योंकि आकांक्षा जी के पास नहीं पहुँचा हुआ है आपका गाना, और चूंकि मैं अपना आईडी बंद करता हूँ तभी, क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, इसलिए मैं अपना आईडी बंद करता हूँ। अब आप लोग मुझे मैसेज नहीं कर पाएंगे, ओके? तो मैंने आईडी बंद कर दिया अपना, अब आकांक्षा जी के पास फिर से अपना डिमांड भेज दीजिएगा, ओके? ओके, तो आज का आखिरी गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, यानी कि खुशबू जी के पसंद, सॉरी मतलब यानी खुशबू जी कर रहा हूँ, रश्मि जी के पसंद है, इंजॉय कीजिए।

ये लाइन बहुत प्यारा है जो हमारी यानी कि मतलब यानी परी जी के लिए मतलब सुंदरता की मूर्ति के लिए है।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

बोलो साथ में।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ये लीजिए
0: मेरे लिए।
1: जी आपकी नजर।

0: न लगा दीजिए।
1: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
0: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जश्न मनाओ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.